बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: ऊपर से तो बकरी भी नहीं चाहती और तुम कूद गई। अकल नहीं है का? चील कौवे भी नहीं खाएंगे तुम्हें।
1: तुम मारना क्यों चाहती थी मुझे?
0: तुम्हें मारने की लकीर थी हमारे हाथ में, फिर किसी हरामे ने मिटा दिया।
1: लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथ की है, जानते हो ना तुम, और उसे कोई हरामी नहीं मिटा सकता।